0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: विजयादशमी 2081 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।